वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: स्लीन सिंह सोइन, इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैं। मीनू, शुरू से बयान दोगी?
1: मेरा नाम मीनू रावत है। मैं बापजी के सबूरी फोर्ट में माँ शेरनी विद्यालय की छात्र हूँ।
2: मेरी जगह तू होता तो किस पे यकीन करता?
3: Jio Hotstar special Hunkar The Roar streaming now exclusively on Jio Hotstar, available on the App Store, Google Play Store and Sky.
4: Saturday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tumse Tum Tak, daily at 8:30 p.m. on Sky 707, Virgin 809 and Z5.

0: The UK's biggest Asian mix continues.
1: बहते जाना है बहते जाना है तेरी चाहत में बहते जाना है बहते जाना है बहते जाना है तेरी चाहत में बहते जाना है
2: Coming up it is बहते जाना है with Arif Khan along with this beautiful classic